0: देखेंगे कॉमनवेल्थ हाइलाइट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स हाइलाइट्स,
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स। नमस्कार, ग्लासगो की ठंडी फिजाओं में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला हर गुजरते दिन के साथ और बुलंद होता जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पांचवे दिन भारत के खाते में आए 6 पदक। ये पदक सिर्फ पदक नहीं बल्कि 4 साल की कड़ी मेहनत, पसीने और त्याग की कमाई है। हालांकि कई मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला, लेकिन उनके जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। 5 दिनों का ये सफर बता रहा है कि भारतीय दल अभी थमा नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में पदकों की चमक को बढ़ाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है।
2: मजबूत टखने, पैरों में लोहे सी मांसपेशियां, कंधों पर बोझ संभाल लेने की अद्भुत ताकत और गजब का भुजबल, ये होती है पहचान वेटलिफ्टिंग की, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इस देश को इन खेलों के पहले तक 46 स्वर्ण पदक सहित कुल 133 पदक दिलाए थे, और ये संख्या इन खेलों में भी बढ़ती ही जा रही है। और कल से ही आरंभ हो गई वो स्पर्धाएं जो किसी भी मल्टी डिसिप्लिनरी खेल उत्सव की सबसे रंगारंग, सबसे ग्लैमरस और सबसे रोमांचक स्पर्धाएं होती हैं। एथलेटिक्स खेलों की रानी कहते हैं इसे, और जिस तरह से भारत एथलेटिक्स की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, उम्मीदें भी जवान होती ही जा रही हैं। कल किन भारतीय पंखों को परवाज मिली, कौन बिजली की तरह कौंधे, कौन के बोझ में दब गए, कहां मायूसी मिली और कहां अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का संतोष भले ही पदक में न बदला हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पांचवें दिन का पूरा लेखा जोखा।
1: कॉमनवेल्थ खेलों का पांचवा दिन भी भारतीय महिला वेटलिफ्टर्स के नाम रहा, जहां ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं को 53 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक दिलवाया। ज्ञानेश्वरी यादव ने 88 किलोग्राम स्नैच और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। ज्ञानेश्वरी का मुकाबला नाइजीरिया की दिग्गज खिलाड़ी ओनेमो ओमुलोला डिडेही के साथ था, जिन्होंने 206 किलोग्राम का कुल वजन उठाकर रिकॉर्ड स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 22 वर्षीय ज्ञानेश्वरी ने शारीरिक दर्द से जूझते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने अंतिम और तीसरे प्रयास में 111 किलोग्राम वजन उठाकर पोडियम पर दूसरा स्थान पक्का किया।
3: मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं। मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊं इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया, मैं इसमें बहुत खुश हूँ।
1: उनकी इस जीत पर छत्तीसगढ़ वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजेश झंगिया जी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा,
4: बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती है ज्ञानेश्वरी यादव, जो उनके पापा जो हैं दीपक यादव जी एक प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन है। हमारे आदरणीय सर थे, उन्होंने कुछ अपना फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करते करते उनको उसी योगदान देते हुए इस मुकाम पे पहुंचाया। पहले छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किए, फिर नेशनल में, आज वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो पार्टिसिपेट करें, उसका पूरा श्रेय वहाँ के लोगों का और हमारे बड़ों का आशीर्वाद से वो आज इस रिजल्ट पहुँचाई है सर।
1: वेट लिफ्टिंग में पदकों का सिलसिला यही नहीं रुका। ज्ञानेश्वरी यादव के बाद बारी आई बिंदिया रानी देवी की, जिन्होंने महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। बिंदिया रानी ने कुल 199 किलो वजन उठाकर भारत को इन खेलों का 6ठा पदक दिलवाया। बिंदिया ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक पक्का कर लिया। इस स्पर्धा में नाइजीरिया की राफियातू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मणिपुर की रहने वाली बिंदिया रानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा पदक जीता है। हालांकि पिछले खेलों की तुलना में इस बार उन्होंने 55 किलोग्राम से बढ़कर 58 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश की थी, जो कि शारीरिक और तकनीकी रूप से एक बड़ा बदलाव था। देर रात हुए मेंस 79 kg में भारत के वल्लूरी अजय बाबू ने केवल वजन ही नहीं उठाया, बल्कि पूरे भारतवासियों की आशाओं और जिम्मेदारियों का भार भी अपने कंधों पर संभाल कर रखा। वल्लूरी अजय बाबू ने स्नैच में 149 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 181 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 330 kg वजन के साथ पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया। अजय बाबू ने गोल्ड मेडल से सिर्फ 1 किलोग्राम वजन से चूक जाने के बावजूद स्नैच में 149 किलोग्राम का गेम्स रिकॉर्ड बनाकर सिल्वर मेडल हासिल किया।
2: स्पर्धाओं की रानी क्वीन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स की शुरुआत कल हो गई। भारतीय दल में सबसे ज्यादा ट्रैक और फील्ड के एथलीट ही हैं, 22 पुरुष

0: 10 महिलाएं, कुल मिलाकर 32 एथलीट। विश्व प्रसिद्ध और भारत की आंख के तारे स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, उनके साथी रोहित यादव, तेजेंद्र पाल सिंह तूर, तेजस्विन शंकर, मुरली श्री शंकर, सर्वेश कुसारे जैसे सितारों से सजा हुआ दल। कल पहला दिन था और बहुत ही शानदार शुरुआत हुई, क्योंकि भारोत्तोलन के सिवा अगर कोई और पदक आया वो आया एथलेटिक्स में। सर्वेश कुसरे ने ऊंची कूद में रजत पदक कमाया। वो तो बस थोड़ा सा किस्मत उनकी खराब थी या किस्मत का फेर था कि वे स्वर्ण पदक नहीं पा सके तकनीकी कारण की वजह से, क्योंकि उन्होंने अधिक अटेम्प्ट लिए थे उस ऊंचाई को पार करने में। बहुत कमाल की ऊंची कूद फांदी कल उन्होंने। पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के तीन तीन एथलीट थे, आदर्श राम, ज्योति शंकर, सर्वेश कुसरे, जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 2.30 मीटर तक पार किया है, दुनिया में नंबर 4 के स्थान पर पहुंच चुके हैं। और तीसरे भारतीय थे तेजस्विन शंकर, मशहूर डेकाथलीट और हाई जंपर। लेकिन तेजस्विन फील्ड में नहीं उतरे, रिटायर्ड हो गए क्योंकि उनको चोट लग गई थी। आदर्श और सर्वेश दोनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी शुरुआत की और 2.1 मीटर की ऊंचाई तक दोनों ही लोग पदक की होड़ में बने हुए थे और पहले 5 स्थानों में थे। सर्वेश तो आगे बढ़ते चले गए और पहुंच गए टॉप 3 के मुकाबले में, और उसमें भी जब किमानी जैक बाहर हो गए इंग्लैंड के, तो वो 2.25 मीटर की जब ऊंचाई पर बार सेट किया गया तो उन्होंने उसको भी तीसरे प्रयास में पार कर लिया। इसके बाद 2.28 सर्वेश और जमैका के रोमेश बेकफोर्ड दोनों ही पार नहीं कर पाए, यानी 2.25 मीटर पर बराबर रहे। लेकिन चूंकि अधिक प्रयास लगाने पड़े थे सर्वेश को, अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने पार किया था, इसके चलते उनको मिला रजत पदक और स्वर्ण पदक गया जमैका के पास। जब दिन की शुरुआत हुई तो जो पहली स्पर्धा थी वही किसी झटके से कम नहीं थे। भारत के गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर की हीट्स में उतरे। 100 मीटर सबसे आकर्षक स्पर्धा होती है जो खेलों के सबसे तेज धावक का निर्णय करती है। एथलीट्स का हुजूम था, 11 हीट्स, 88 प्रतियोगी। हीट नंबर 4 में गुरिंदर, और गुरिंदर भारत के सबसे तेज धावक है इस समय। अपनी हीट में गुरिंदर जमैका के रोहन वॉटसन के पीछे रहे, दूसरे स्थान पर आए, लेकिन जब पूरा देखा गया मिलाकर तो वो आए 20वें स्थान पर, जबकि क्वालिफाई किया 17 लोगों ने। फिर आया समय मुरली श्री शंकर का, जो निसंदेह देश के सबसे अच्छे लॉन्ग जंपर है। उन्होंने उम्मीदें जवान रखी इस देश के खेल प्रेमियों की, अपने पहले प्रयास में ही क्वालिफिकेशन मार्क 8 मीटर पार कर लिया, 8.01 मीटर की दूरी फलांग कर। मुरली अब पदक की दूरी लांघने के लिए उतरेंगे कल रात, और भारत के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होंगे।
1: Hopefully I have to redeem my silver medals from last Commonwealth Games.
0: लॉन्ग जंप में ही भारत के एक और एथलीट थे लोकेश सत्यनाथन, वो बहुत रंग में नहीं दिखे इस सीजन में। अपना सर्वश्रेष्ठ 8.21 मीटर निकालने वाले लोकेश 7.77 मीटर ही कूद सके।
2: I finished fourth in my group and it was a big, two big jumps in the last and it was a scratch. But you know, bigger things is coming on Wednesday, so stay tuned.
0: पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स के सुबह हुए राउंड 1 के मुकाबले में हीट 1 में तेजस अशोक शिरसे ने क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन देर रात हुए फाइनल मुकाबले में वो सबसे पीछे स्थान पर आ पाए।
3: एथलेटिक्स के बाद बात करते हैं पैरा एथलेटिक्स की, जहां कल का दिन रहा भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम। एक ही गेम, एक ही कैटेगरी, और वो पल जिसमें 2 स्थान आए भारतीय महिलाओं के नाम। जी हां, भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को इस संस्करण का दूसरा गोल्ड मेडल दिलवा दिया। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा ने 7.26 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरा एथलेटिक्स में ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के राकेश भाई भट्ट ने पुरुषों की 100 मीटर T38 फाइनल स्पर्धा में 11.82 सेकंड का समय निकालते हुए 5वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रेयांश त्रिवेदी ने 12.22 सेकंड के समय के साथ 6ठे स्थान पर अपनी दौड़ समाप्त की।
0: इस बार भी मुक्केबाजों ने उम्मीदों को भरपूर हवा दे रखी है। अब तक जितने भी बॉक्सर जितनी बार रिंग में उतरे हैं, 2 के सिवाय, रेफरी ने हर बार उनका हाथ ऊंचा ही उठाया है। लेकिन एक बार जब ऊंचा नहीं उठा वो कल भी था। कल 4 भार वर्गों में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले थे और 3 भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले जीतकर पदक पक्का करने से बस एक बाउट दूर ही रह गए हैं। सबसे पहले रेड कॉर्नर में सचिन सिवाच ने तीसरे राउंड में बेहतरीन मुक्केबाजी कर अंकों के आधार पर 4-1 से इंग्लैंड के विलियम हेविट को परास्त किया।
4: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारी उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। गोल्ड लिया ने
0: और इसके बाद 80 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में अंकुश ने जबरदस्त पंचेस और जैब्स के साथ साथ बेहतरीन रक्षण करते हुए 5-0 के एक मत से फाइट अपने पक्ष में कर ली।
5: यूनानिमस डिसीजन, द विनर इन द रेड कॉर्नर फ्रॉम इंडिया।
0: दिन की एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज साक्षी भला क्यों पीछे रहती महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में। पूरी चपलता के साथ रिंग को कवर करते हुए मुक्कों की बौछार कर दी उन्होंने और बोत्सवाना की लियाबो मुडुकांडे को उनको बिल्कुल बेबस कर दिया। 5-0 से सर्वसम्मति के साथ निर्णय उनके पक्ष में रहा और साक्षी अब पदक की साक्षी बनने के बहुत नजदीक पहुंच गई हैं।
6: मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और मैं उम्मीद करती हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत।
0: दिन की अंतिम बाउट थी 70 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित की नॉर्दर्न आयरलैंड के जॉन मैकेलेन के साथ और सुमित ये मुकाबला अंकों के आधार पर हार बैठे।
3: चलिए अब आपको लिए चलते हैं फुर्ती और फ्लेक्सिबिलिटी के खेल जिमनास्टिक में, जहां आर्टिस्टिक जिमनास्टिक में महिला वर्ल्ड फाइनल में प्रतिष्ठा सामंता 7वें स्थान पर रही।
0: तैराकी में राष्ट्रमंडल खेलों में स्पर्धा खासी तगड़ी होती है। ऑस्ट्रेलिया तो हावी रहता ही है, लेकिन कनाडा, इंग्लैंड आज भी बहुत कड़ी चुनौती पेश करते हैं। भारत के पुराने सीजंड पुरोधा साजन प्रकाश कल तरणताल में उतरे। 200 मीटर बटरफ्लाई में उन्होंने क्वालिफाई किया और तीनों हीट्स में कुल मिलाकर वे 6वें स्थान पर रहे और फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल बहुत देर रात 2 बजे हुआ। वहां पर साजन प्रकाश अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रहे और पदक की होड़ से बाहर हो गए।
3: आइए अब जानें पैरा स्विमिंग में भारत का हाल। देर रात हुए फाइनल में स्वातिक पाटिल ने 5वां स्थान हासिल किया। स्वातिक ने फाइनल में 1:15.82 का समय निकाला। इस कैटेगरी में स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया, रजत न्यूजीलैंड और ब्रॉन्ज भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की झोली में गया। कर्नाटक के रहने वाले स्वातिक ने इस बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहद कड़ा मुकाबला पेश किया। हालांकि वो पदक तालिका में स्थान बनाने से चूक गए, लेकिन 5वें स्थान पर फिनिश उनके खेल के कौशल को दर्शा गया।
7: Involves India's Putul Sonowal's Commonwealth Game 2026 campaign comes to an end after a loss against Kenya's Anwar Hamada. Despite a determined effort, Putul went down 0.5 to 1.5. He trailed 6-8 in his first set, and in second set he regained his composure and bounced back with good throws and leveled second set 5-5. But it was not too little and too late, and he missed out on a place in the semi-finals. The Indian bowler finished with 2 wins and 3 losses, defeating Canada and Falkland Islands while losing to Malaysia, Malta and Kenya during his campaign. He finished 5th in his section and could not qualify for the semi-finals.
3: अब बात आती है 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल की, जहां भारतीय महिला टीम रीना, लक्ष्मी, मीनाक्षी, ऋतु पूल बी के 3वें मैच में नाइजीरिया से 6-7 से हार कर बाहर हो गई।
0: और आइए अब एक संक्षिप्त निगाह डालते हैं आज होने वाली स्पर्धाओं में। वेटलिफ्टिंग, जिसमें अब तक बहुत पदक आए हैं, उसमें 63 किलोग्राम भार वर्ग में निरुपमा सेराम और 69 किलोग्राम में हरजिंदर कौर अपने बाजुओं का दम आजमाएंगी। एथलेटिक्स में 400 मीटर की स्पर्धा है पुरुषों की, महिलाओं में ऊंची कूद में पूजा होंगी, 10,000 मीटर में कुलवीर सिंह होंगे। बॉक्सिंग में 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति, 60 किलो में प्रिया, 65 किलोग्राम में परवीन और पुरुषों में जादूमणि सिंह, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया, ये सब आजमाएंगे अपने मुक्कों की ताकत।
3: राष्ट्रमंडल खेलों की इस अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए संपादक स्वाति कपूर, प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं कविता शर्मा अपने सहयोगी अनुपम पाठक के साथ लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।
8: The Commonwealth Games.
9: गाने बाजू, ओनली रेडियो, सुनो 107 FM Rainbow. Shat Shure Sharadi. Shat Shure Sharadi.
10: শুনছেন নমস্কার কলকাতা, নমস্কার কলকাতা 107 FM Rainbow তে নমস্কার কলকাতা, নমস্কার কলকাতা।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो।

त्रिवेदी और पलक मुच्छल की आवाजें और इसी के साथ शुरू हो चुका है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन। जुड़ चुके हैं आप दिल से दिल तक 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का ये FM रेनबो चैनल है। 10:09 और 4 सेकंड नॉनस्टॉप गपशप, जहां ढेर सारी बातें, ढेर सारी जानकारियां और साथ ही साथ गीतों का सिलसिला। बता दूं आपको, स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल पूरे दिन छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बात करें अगर गुजरे कल की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री यानी कि सामान्य से 2.2 डिग्री कम रहा और न्यूनतम तापमान 26.6 यानी कि सामान्य से 0.1 डिग्री कम रहा। उच्च आर्द्रता 96% और निम्न आर्द्रता 77% रही। वर्षा 6.8 मिलीमीटर हुई। साथ ही साथ मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी है। 28 जुलाई 2026 पश्चिम बंगाल तट, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा उत्तर बंगाल की खाड़ी में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है और ये झोंके 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। फिलहाल आपके लिए सलाह ये है कि जुड़े रहें दिल से दिल तक और हमारे साथ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो तक आना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 2213-1341। 10:15 से लाइनें आप सबके लिए खुली रहेंगी पूरे 11 बजे तक। अब आप पूछेंगे कि आज बातचीत का विषय क्या होगा। विषय बेहद आम जिंदगी से जुड़ा हुआ। जब हम बात करते हैं बारिश के मौसम की, तो हम अपने आप में खो जाते हैं अलग अलग तरह के भावों में। जब हमें बारिश में भींगते हुए ऑफिस जाना होता है, तो क्या मुसीबत आन पड़ी, ऐसे वाले फीलिंग्स आती हैं हमारे अंदर। बस दिल करता है कि अपनी खिड़की में बैठ के बारिश की बूंदों को देखते रहें, गरम गरम पकौड़ियों के साथ चाय कॉफ़ी का लुत्फ उठाते रहें। लेकिन जब बात होती है हमारे हाउस हेल्पर की, तो हमारे विचार कैसे होते हैं बता दीजिए हमें। 2213-1341 हमारा नंबर है, जुड़ जाइए दिल से दिल तक।

0: आज का दिन 28 जुलाई का दिन मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, जैव विविधता को पर्यावरण संतुलन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समर्पित है ये देश, ये दिन। उद्देश्य है महत्व को आम आदमी तक बताना, प्रकृति के सीमित संसाधनों जल वन खनिज को सही तरीके से उपयोग करने और उपयोग करने की सीख देना, संकटों से मुकाबला, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई जैसी गंभीर समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना और साथ ही साथ लुप्त प्राय प्रजातियों, पेड़ पौधों, जानवरों की रक्षा करना। संरक्षण के मुख्य उपाय पेड़ लगाना, अधिक से अधिक वनों का दायरा बढ़ाना, जल संरक्षण, पानी की बर्बादी रोकना, वर्षा जल संचयन, प्लास्टिक का त्याग, सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल बंद हो जाना, यानी कि सतत विकास के लक्ष्य को पा लेना। आज का दिन 28 जुलाई का दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम लेट्स ब्रेक इट डाउन, आइए इसे समझें। ना समझ आए तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर समझें, लेकिन जानें ये बीमारी क्या है और किस तरह से हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, किस तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं, किस तरह से हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। बात करें अगर आज के दिन जन्मे लोगों की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कांसु ब्रह्मानंद रेड्डी का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1909 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1927 में। हिंदी के कवि, लेखक और रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य अनुवादक अनिल जनविजय का जन्म हुआ था वर्ष 1957 में। रुक करें बॉलीवुड का, तो गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी फिल्म से ख्याति प्राप्त करने वाली अभिनेत्री हुमा कुरैशी का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1986 को नई दिल्ली में, और 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी जैसी फिल्मों से अपनी अभिनय क्षमता लोगों तक पहुंचाने वाली अभिनेत्री आयशा जुल्का का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1972 में। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सिंगर अभिनेता हिंदी फिल्म रांझना में अपने अभिनय को स्थापित कर देने वाले अभिनेता धनुष का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1983 में। ये तो रहा कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में
1: आज के दिन।
0: सिलसिला जानकारियों का, सिलसिला गीत संगीत का जारी रहेगा पूरे 11 बजे तक।

योगेश मांडवी वाला जुड़े थे हमारे कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप से 12/7 से, और उन्होंने कहा कि अगर हमारी हाउस हेल्पर ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे घर को, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम पर हूँ और थोड़ा सा फुर्सत मिलते ही मैं घर के कामों में अपनी जीवन संगिनी की मदद कर देता हूँ। और दूसरे दिन जब लौट कर आती है हमारी हाउस हेल्पर तो मैं उसे भी अपनी जीवन संगिनी से बचा लेता हूँ। जाने तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं दीदी कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं बात कर लूँगा आपकी भाभी जी से, ऐसे बोल के मैं माहौल को शांत कर लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इस स्टेटमेंट के बाद योगेश के घर के हालात कैसे होने वाले हैं। चिचुड़ा हुगली से पारस पंडित जुड़े थे हमसे, और पारस जी ने कहा कि उनका घर हुगली नदी के किनारे बिल्कुल हरे भरे स्वच्छ वातावरण के बीच है। और सबसे स्पेशल बात जो उन्होंने कही, घर में हाउस हेल्पर वो खुद हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं और पूरे घर का काम हंसी खुशी एक दूसरे के साथ प्रेम सौहार्द को बढ़ाते हुए बांटते हुए कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं कि अगर काम वाली ना आए तो क्या किया जाए और कैसे किया जाए, ये बेफिक्री भी अपने आप में बेहद खूब है। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, पूजा है आपके साथ, जुड़े हैं आप दिल से दिल तक।

मुड़ चलें अब अपने कॉलर की ओर और देखें कौन है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। हेलो हेलो, आप ऑन एयर हैं। हेलो, तरह तरह की आवाजें आ रही हैं सिर्फ आपकी आवाज के सिवाय। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है फोन का कनेक्शन कट चुका है, लेकिन ये जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है दिल से दिल तक का, ये यूं ही जुड़ा रहेगा पूरे 11 बजे तक। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप से, तो कॉल कीजिए 2213-1341 पर। पूजा है आपके साथ, बना रहेगा साथ पूरे 11 बजे।

0: जो कार्यक्रम में आ गए वो भी बढ़िया, जिनकी कॉल कनेक्ट हो गई वो भी बढ़िया, और जिनकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई वो भी बढ़िया। फिलहाल हमारे साथ हैं शौबिक सरकार कस्बा से। हेलो।
1: हेलो,
0: स्वागत है आपको शौबिक कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। बताएं कैसा रहा आपका अनुभव, क्या कहना चाहते हैं आप?
1: मेरे अनुभव जो मेरे जो घर की जो काम जो वो मैं खुद ही करता हूँ, किंतु एक छोटा सा बात बताऊंगा, सुबह से लेकर शाम तक वो मैं ही काम कम साफ सफाई करता हूँ। कल में एक मासी था, वो घर में जो काम कम करने आता था, बारिश में एक अटक गया था दीदी, दूर से आता था, बारीपुर से आता था, हम लोग को साउथ के एक स्टेशन है। तो जब मैं फोन किया था उसने बोला था, मासी ने बोला था, बेटा मैं तो अटक गया हूँ क्योंकि पटरी में वो पानी जम गया था, उसलिए ट्रेन लेट चल रहा था, कुछ कुछ ट्रेन बातिल भी हो गया था। मैं समझ गया था ठीक है चलो होता है कभी कभी। उसके बाद दीदी वो

0: तीन चार दिन से नहीं आया है, किंतु उसके बाद जब आया था मैंने जो कोई कोई आदमी जो टाका कट देता है, हाँ तुम नहीं आया तो इस दिन का चार पांच दिन का टाका कट, किंतु मैं उस टाइम में दीदी उसका जो टाका जो होता है ना जो मैं नहीं काट रहा था, क्योंकि उसके प्रॉब्लम में समझ गया था, हाँ मासी के प्रॉब्लम है ये है मैं समझ गया था। उसके बोला था घर में सब ठीक ठाक है ना, टेंशन मत लो, मैं मासी आपको जो रुपये जो है मैं नहीं काटूंगा।
1: बहुत अच्छा
0: स्माइल आया था।
1: आज के समय में इसी मानवीय संवेदना की हमें जरूरत है जो आपने दिखाया।
0: हाँ दीदी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद शौभिक हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और साथ ही साथ बता दूं, पायल जुड़ी थी हमसे बेलगोरिया से, और पायल का भी यही कहना था कि अगर मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती है तो ठीक है, मुझे थोड़ा बुरा तो लगता है, मैं भी इंसान हूं। मन में ये बात भी आती है कि अगर पहले से बता देती तो सुविधाएं थोड़ी सी हो जाती मेरे लिए, लेकिन अगर नहीं आई तो उस एक घटना के लिए वो भी तो इंसान है, रिश्ते खराब वो नहीं करती हैं। दमदम से जुड़ी थी आसिफा, और आसिफा ने बताया कि पहले जब वो सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ थी तो हाय तौबा मचा दिया करती थी, इस चक्कर में पूरे पाढ़ा में पूरे मोहल्ले में उनका नाम भी खराब हो गया था कि आसिफा तो तुरंत काम वालियों को निकाल देती है, एक छुट्टी भी एक्स्ट्रा नहीं देती। लेकिन पिछले 5 सालों से आसिफा खुद वर्किंग है, और जब वो खुद वर्किंग हुई तो उन्हें समझ आया कि नौकरी की क्या अहमियत होती है और किस तरह से अपने घर को संभालते हुए औरतें घर से बाहर काम करने के लिए निकलती हैं। अब आसिफा का व्यवहार उनके हाउस हेल्पर के प्रति काफ़ी बदल चुका है, और जब से वो खुद नौकरी में आई हैं तब से एक ही मासी है जो उनके घर में लगातार पिछले 5 सालों से काम कर रही है। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए, औरों से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। फिलहाल विशाल मिश्रा और आतिफ असलम।

0: बारिश का मौसम है, थोड़े से सेल्फिश होकर अपने लिए एक चाय का प्याला तैयार करो ना। अपने लिए थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाओ ना। अपने लिए थोड़ी सी जिंदगी अपने आप से चुराओ ना। फिलहाल कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में वक्त हो चुका है
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: और आज का जो नुस्खा है वो एक चुटकी नुस्खे नहीं बल्कि नुस्खा है। जी हाँ, बारिश के मौसम में कपड़ों से एक अजीब सी दुर्गंध, सीलन की दुर्गंध, नमी की दुर्गंध आने लगती है। कैसे बचाएं हम अपने कपड़ों को नमी की उस दुर्गंध से, यही मैं आपको बताने वाली हूं एक चुटकी नुस्खे के रूप में। अपने कपड़ों को पहला काम तो ये करें कि देर तक गीला ना छोड़ें। बारिश के मौसम में कोशिश करें कि थोड़े पतले कपड़ों का प्रयोग करें, बहुत मोटे कपड़े ना पहने। बेकिंग सोडा को एक छोटी कटोरी में करके या कि फिर सूखी नीम की पत्तियां या कि फिर कपूर की गोलियां अपनी अलमारी में रखें। ये नमी को सोखता है और कपड़ों में ताजगी बनाए रखता है। कपड़ों को पंखे के नीचे पूरी तरह से सुखाएं और फिर हो सके तो उन्हें तह लगाकर या तो गद्दे के नीचे रख दें या कि फिर अपने न्यूज़पेपर्स के बीच में रख दें। इससे कपड़ों में बैठी हुई नमी कागज़ सोख लेता है और आपके कपड़े फ्रेश रहते हैं। कोशिश करें संभव हो तो कपड़ों को प्रेस करके ही अलमारी में रखें। ये जो चुटकी चुटकी भर नुस्खे हैं ये आपको तरोताज़ा, आपके कपड़ों को तरोताज़ा रखने में काम आएंगे। आजमाया नुस्खा है, आप भी आजमा कर देखें
1: एक चुटकी नुस्खे।

0: दिल अगर राजी हो तो अगर मगर इफ बट जैसी कोई बात रह ही नहीं जाती। फिलहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कौन है, आइए कर लेते हैं उनसे बात। ये हमारे आज के आखिरी कॉलर होंगे। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग पूजा जी।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कौन कहाँ से?
1: मैं मोनिरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण सांकरेल हावड़ा से।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। बताइए हमारे आज के विषय पर आपको क्या कहना है?
1: सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा ट्रॉफिक लाने के लिए और इतना अच्छा अच्छा गाना बजाने के लिए। और जो ट्रॉफिक है वो बहुत ही एसेंशियल ट्रॉफिक है, क्योंकि हमारे हाउस हेल्पर हमारे लिए बहुत कीमती है और उसका जो काम है हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, इसीलिए उसका जो प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम मानना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो प्रॉब्लम हमारी हो सकता है ये मानना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान है, हम एक इंसान है, किसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है।
0: बिल्कुल एकदम एकदम सही कहा आपने। और अगर बारिश के मौसम में कभी भींगते हुए आपकी हाउस हेल्पर, आपकी मासी आपके घर आए तो प्यार से उसे दूसरे कपड़े दीजिए बदलने के लिए और कह दीजिए कि आज तुम घर चली जाओ, इस तरह भींगी हुई अवस्था में काम मत करो, और हो सके तो उसे एक कप गर्मा गर्म चाय भी ऑफर कीजिए और अपनी इंसानियत का सबूत दीजिए। खुद भी संतुष्ट रहिए, खुश रहिए और एक अच्छे रिश्ते को भी जन्म दीजिए जो हमेशा आपके दिल में और उस व्यक्ति के दिल में जिसके प्रति आपने सहानुभूति दिखाई है बना रहेगा, बरकरार रहेगा। और फिलहाल घड़ी की सुइयां कह रही हैं मुझसे बस पूजा, आज के लिए इतना ही। होगी आपसे मुलाकात फिर किसी सुबह फिर किसी शाम, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जुड़े रहें दिल से दिल तक। नमस्कार।

दोपहर के 3:02 सुचिश्मिता मैं आप सबके साथ 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक पर कार्यक्रम सुन रहे हैं आप तीन का तड़का और आपकी मैरिनी को थोड़ा सा तड़केदार बनाने के लिए रुक करते हैं अगले गीत की ओर। यानी कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: सफर का कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और वक्त हो गया है। सुनने का प्रयोजना प्रस्तुति
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: परियोजना प्रस्तुति में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की।

0: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दोस्तों आज इस आलेख में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण योजना की, जो देश के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को कठिन परिस्थितियों में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस का जो है महत्वपूर्ण पहल यह है कि वर्ष 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब भारत सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि संकट की घड़ी में किसी भी गरीब परिवार को भोजन और आवश्यक असुविधाओं की जो है कमी को सामना न करना पड़े। इस योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निःशुल्क खाद्य और उपलब्ध कराया गया। पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति निर्धारित मात्रा में गेहूं या चावल तथा दालें उपलब्ध कराई गई। इससे जो है लाखों परिवार को खाद्य सुरक्षा मिली और महामारी के कठिन समय पर ये बहुत बड़ी राहत हुई, ये राहत उन्हें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त जनधन खाता धारक महिलाओं को आर्थिक सहायता, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क LPG सिलेंडर, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को तथा विधवाओं को जो है महिलाओं को विपत्ति सहायता तथा मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर से वृद्धि जैसे अनेक कदम जो है उठाए गए। इस प्रयासों का उद्देश्य गरीबों की आजीविका को सुरक्षित रखना और उनकी आर्थिक कठिनाइयों को कम करना था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने यह संदेश दिया कि संकट के समय में सरकार समाज के कमजोर वर्ग के साथ मजबूती से खड़ी है। इस योजना ने न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास और आत्मबल की जो है उसे भी जगाया। आज भी भारत में गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका जो उद्देश्य है वो समावेशी विकास और प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। इस योजना का लाभ तभी अधिक प्रभावी होगा जब पात्र लोग जो है समय पर जानकारी प्राप्त करें और उनका सही तरीके से लाभ उठाएं। आज की प्रयोजना प्रस्तुति यहीं तक। परियोजना प्रस्तुति में आज हमने बात की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

0: एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: कार्यक्रम तीन का तड़का, 3:20 स्टूडियो की घड़ी में वक्त, और रुक करते हैं अगली गीत की ओर, जो आपके और मेरे दोपहर में थोड़ी सी और मसालों के साथ तड़का लगा दें, क्यों है ना। और चूंकि ये दोपहर का वक्त है और हम सब जो है इस वक्त थोड़ा सा हमें आलस हो जाता है, या हम अपने सिस्टम के सामने होते हैं या अपने घर पे होते हैं। अगर हम सिस्टम के सामने भी हैं तो दोपहर के लंच के बाद थोड़ा सा लगता है कि बस अब थोड़ी सी चाय मिल जाए या फिर थोड़ा सा आराम, और साथ में अगर हम घर पे हैं तो बस बिस्तर हमें बुलाने ही वाला होता है। ऐसे में गीत बहुत ज़रूरी है, गानों के साथ जो है हम एनर्जेटिक फील कर सकते हैं और जो है दोपहर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो रुक करते हैं अगली गीत की ओर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: लोहानसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
1: और राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
1: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
1: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
1: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
1: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
1: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं
2: जी।
1: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
1: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
1: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
2: जी।
1: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
1: जी। श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
2: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
1: जी। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
1: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
2: एनसीईआरटी की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता,

0: तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
1: दीदी इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
2: दीदी ये तो एकदम बुद्धू है।
1: दीदी दीदी ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी
0: बोलो लता, क्या बात है?
4: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
5: नमस्ते बहन जी।
6: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते दीदी।
9: नमस्ते दीदी।
10: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते शिखा।
11: अरे दीदी जी आप आइए आइए।
0: नमस्ते बहन जी।
11: नमस्ते, यहाँ बैठिए
0: जी,
11: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
0: अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
11: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
0: हाँ ये तो है।
11: अरे लो लता के बापू भी आ गए।
0: राम राम दादा।
12: हाँ,
0: कैसे हैं आप?
12: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
0: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
12: अरे बहन जी ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
0: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
12: अच्छी? और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
0: अरे लता आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास।
3: जी दीदी।
12: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
0: जी।
4: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
0: अच्छा बच्चों ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
13: दीदी लता। दीदी लता।
0: लता?
1: जी दीदी।
0: क्या ये लता?
13: जी दीदी।
0: अरे नहीं।
1: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
0: अच्छा?
1: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था।
0: हुँ?
1: हम सब उसे पकड़ने दौड़े पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया।
0: हुँ?
1: सारे थक गए पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
0: अच्छा?
1: जी दीदी।
0: लता ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही हैं बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है, वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी, मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें, वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
3: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: हैं?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो।
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
3: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
3: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।

उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी ना रखें।

0: भाई ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है
0: भाई।
2: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
1: हाँ हाँ।
2: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
1: अच्छा,
2: उसके सचमुच के बाल है।
1: ओहो,
2: और एक कंघी भी है।
1: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
2: ठीक है।
0: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूं।
1: ठीक है ठीक है, आ जाना।
0: अच्छा
1: मैं भी आ

0: हाँ,
1: मैं भी आ जाऊँ लता?
0: तुम भी आ जाना।
2: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: प्यार भरे नगमे,

अरे नगमे, वाला सभी नहीं आया एफएम रेनबो, दिल से दिल तक पसंद रहे हैं आप कार्यक्रम छायालोक और छायालोक के अंतर्गत आज हम कार्यक्रम जो सुन रहे हैं वो है प्यार भरे नगमे। और प्यार भरे नगमों की बात तो बॉलीवुड में कुछ बोलिए ही मत कितनी है, आप जितना चाहे उतने रोमांटिक गीत सुन सकते हैं और प्यार प्यार तो बस हो जाता है बातों से, नगमों से, फिल्मों से और उस शाम से जब इन लम्हों में कोई अपना अब करीब हो अपने।

साजन फिल्म से सुना आपने इस गीत को एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, और बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जी जी जी, मैं भी आप लोगों से बेहद प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तभी तो कोशिश मेरी ये रहती है कि हर शाम जो है आपके साथ बीते, जितना हो सके हम सब आपको बेहतरीन नगमे सुनाएं और आपके दिल को जीत जाए। कार्यक्रम सुन रहे हैं प्यार भरे नगमे, और प्यार भरे नगमों की बात हो, दिल तो पागल है, गीत ना बजे ये कैसे हो सकता है ना। तो अगला गीत बिल्कुल तैयार आप सबके लिए लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, दिल तो पागल है।

107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जिसका नाम है छायालोक। छायालोक के अंतर्गत आज हो रही है बातें प्यार भरे नगमों की। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ। ना चांद की चाहत है, ना चांद की चाहत है, ना सितारों की फरमाइश। ना चांद की चाहत है, ना सितारों की फरमाइश, बस हर पल तेरे साथ हो, बस हर पल तेरे साथ हो, इतनी है ख्वाहिश।

बारिश की रात और तेरा साथ, बारिश की रात और तेरा साथ, इसे खूबसूरत क्या होंगे जज्बात। एक छतरी हो और तू मेरे साथ सिमट जाए, और ऐसी ये वक्त बस वहीं थम जाए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: प्यार भरे नगमे,

0: 7:40 स्टूडियो की घड़ी में वक्त और मैं श्रुतिश्वता आप सबके साथ प्यार भरे नगमे सुन रहे हैं आप कार्यक्रम 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक पर। और अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में दिल है कि मानता नहीं फिल्म से इस प्यारे से गीत को मैनु इश्क का चर्या रोग। भाई रोग तो लग गया, आप प्यार का रोग मोहब्बत का रोग जिसे लग गया उसे तो आप पीछे नहीं मोड़ सकते। वो कहते ना तेरे इश्क में कुछ इस कदर खो गए हैं, तेरे इश्क में कुछ इस कदर खो गए हैं, न खुद की रही खबर न किसी और की। दिल की हर धड़कन तेरा नाम लेती है, हर दुआ बस तेरी लिए होती है। पता नहीं ये मोहब्बत है या इबादत, बट हर जिक्र बस तेरा ही होती है।
1: लत मोहे ऐसी लागी

107.9 FM ड्रीम वो दिल से दिल तक पर सुन रहे हैं छाया लोक और प्यार भरी नगमे, प्यार भरे नगमे कार्यक्रम में सुन रहे हैं हम प्यारे प्यारे नगमे। सुनवाऊंगी आपको एक और गीत कैलाश खेर की आवाज में, और इस गीत को सुनते सुनते चलेंगे हम एक न्यूज ब्रेक पर। न्यूज ब्रेक के उस पार रहेंगी प्रीति मुरारका आप सबके लेकर, और आप सबके साथ रहेंगी वो पूरे 9 बजे तक, और सुनेंगी ढेर सारे और प्यारे प्यारे गीत। गीत के साथ दीजिए इजाजत छुट्टी स्मिता को, सुनते रहिए साथ रहिए 107.9 FM ट्रेन बहुत दिल से दिल तक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला।

7912 या 221 3131 पर आप डायल कर सकते हैं और हम तक पहुंच सकते हैं अपनी फरमाइश लेकर. फरमाइश लेकर आते हैं तब तक चलिए कुछ बात हो जाए. कभी कभी ज़िंदगी बहुत साधारण सी चल रही होती है. सुबह वही, शाम भी वही, वही रास्ते, वही लोग, वही दिनचर्या. लेकिन फिर एक दिन कोई ऐसा मिलता है जिसके आने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता. मज़े की बात यह है कि इंसान हमें बदलने की कोशिश भी नहीं करता, बस उसकी मौजूदगी ही हमारी दुनिया बदल देती है.

107 FM रेनबो पर मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त प्रीति लेकर आयु कार्यक्रम छाया लोग। वक्त तो चला है 8:10 और 21 सेकेंड। किसने हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाई है ये जानने से पहले चलिए एक बात बता दूं। देखिए ना, पहले मोबाइल सिर्फ ज़रूरत के लिए उठाते थे, अब हर कुछ देर में स्क्रीन देख लेते हैं कि कहीं कोई संदेश तो नहीं आ गया। पहले बारिश सिर्फ मौसम हुआ करती थी, अब वही बारिश किसी की याद लेकर आने लगती है ना। यही तो है प्यार का असर। और हमारे पास जो फरमाइश आई थी नरेंद्रपुर से राजकुमार टाडिया ने, और उन्होंने ही मौसम से ही रिलेटेड एक गाना सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म लोफर से, तो चलिए उनके फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: चलिए देख लेते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो
1: हेलो नमस्ते दीदी, मैं बरगाचिया जुगतपुर पर हावड़ा से प्रशांत ठाक बोल रहा हूँ।
0: हाँ प्रशांत जी बताइए कैसे हैं आप।
1: हाँ बहुत ही अच्छे हैं।
0: चलिए बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज।
1: मुझे सोनी महवाल से आशा भोसले अनुवार की गाया हुआ सोनी मेरी सोनी सोनी ये गाना सुनना है।
0: बिल्कुल,
1: शायद आपके सभी श्रोताओं को ये डेडिकेट करता हूँ।
0: शुक्रिया आपका। चलिए प्रशांत जी ने तो अपनी फरमाइश रख दी हम तक, उन्होंने सुनना चाहा है सोनी महवाल का आशा भोसले और अनवर की आवाज़ में एक बहुत ही अच्छा सा गीत। कहते हैं कि हर दौर की अपनी एक कहानी होती है। आज मैसेज वीडियो कॉल और सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब प्रेम की राह में न मोबाइल था न कोई आसान सा रास्ता। तब थी सिर्फ सोहिनी और महिवाल। हर रात सोहिनी कच्चे घड़े के सहारे उफनती नदी पार करती थी सिर्फ अपनी महिवाल से मिलने के लिए। सोचिए वह सिर्फ नदी नहीं पार करती थी बल्कि समाज की बंदिशें डर और दुनिया भी पार करती थी। आज जमाना बदल गया है, नदियां शायद कम रह गई।

है, लेकिन दूरियां आज भी हैं, कभी शहरों की, कभी समय की, तो कभी अहंकार की। आखिर प्यार की असली परीक्षा यही तो है, क्या हम उन दूरियों को पार करने का साहस रखते हैं।

0: वक्त चले हैं 8:27:39। देखते हैं कि अब हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: हेलो,
0: हाँ सुन रही हूँ मैं, बताइए कौन है आप?
1: दीदी कैमन आछेन? दीदी भालो आछेन?
0: बहुत अच्छी हूँ, बताइए आप कैसे हैं?
1: आमी गोरिया ब्रह्मपुर थेके सब्जी बाबलू बोलछी।
0: हाँ जी बताइए।
1: दीदी आमी एकटा मोहम्मद रफिक साहेबेर मेहबूबा ओ मेरी मेहबूबा एई गानटा एकटु
0: आप सुनना चाहते हैं? चलिए कोई बात नहीं, आपकी फरमाइश पर हम जरूर सुनाएंगे। तो इन्होंने तो अपनी फरमाइश रख ली, ओ मेरी महबूबा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म धर्मवीर से। वैसे भी मोहब्बत की अपनी एक अदाई होती है, कभी वह चुपचाप आंखों में उतर जाती है तो कभी पूरे संसार के सामने बेखौफ होकर अपने दिल की बात कह देती है। पुरानी फिल्मों का प्यार भी कितना दिलचस्प था ना, ना सोशल मीडिया ना वीडियो कॉल, लेकिन दिल में इतना यकीन कि पूरी महफिल के सामने भी

महबूब की तारीफ करने में झिझक नहीं होती थी। जरा सोचिए, आज अगर कोई किसी भीड़ भरे बाजार में खड़े होकर पूरे दिल से कह दे कि ओ मेरी महबूबा, तो लोग तो पहले मुस्कुराएंगे, फिर मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, है ना। लेकिन सच्चा प्यार कभी जमाने की परवाह नहीं करता, उसे बस अपने महबूब की मुस्कान दिखाई देती है। तो आइए मोहब्बत की उसी शाही अदा, उसी बेपरवाह अंदाज और उसी दिलकश एहसास के साथ सुनते हैं धर्मवीर का ये सदाबहार गीत।

वक्त तो चला है 8:35 आप सुन रहे हैं छह लोग अपने दोस्त प्रीति के साथ। जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बात क्या है पता है? जब हमारे पास समय होता है ना, तब अक्सर हमारे पास वह इंसान ही होता, और जब वह इंसान मिल जाता है तब समय जैसे हाथों से फिसलने लगता है। हम अक्सर कहते हैं अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन प्यार कैलेंडर नहीं देखता, उसे तो बस कुछ सच्चे पल चाहिए, ऐसे पल जो बरसों बाद भी याद बनकर मुस्कुरा दे। सोचिए जा, स्टेशन पर विदा लेते समय कुछ मिनट, ऑफिस जाने से पहले एक कप चाय साथ पी लेना, शाम को छत पर 5 मिनट की बातचीत, या रात को सोने से पहले बस इतना पूछ लेना, दिन कैसा रहा। यही वो छोटे छोटे पल है जो किसी रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। आखिर मोहब्बत की उम्र सालों से नहीं, यादगार लम्हों से मापी जाती है। तो आइए सुनते हैं ना इन्हीं अनमोल लम्हों को सलाम करते हुए मोहिनुद्दीन लश्कर की फरमाइश पर फिल्म दिल क्या करे से अलका याग्निक की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

0: देखते कि अब हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: पुलिया माठपारा नोदिया से, वासुदेव भगत पर बोल।
0: हाँ जी बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: इमरान जा फिल्म से के मोहम्मद रफी कंटे ये दुनिया है मैं के।
0: ओके, चलिए इनकी फरमाइश पर तो हम गीत ज़रूर सुनाएंगे, पर एक बात हम भी कहना चाहेंगे आपसे कि कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी कमी महसूस होती है। घर है, लोग हैं, काम है, हंसी भी है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन चुपचाप सा बैठा रहता है। शायद इसीलिए कि कुछ रिश्ते सिर्फ साथ नहीं देते, वे हमारी पूरी दुनिया बन जाते हैं। हीर और रांझा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उनके लिए मोहब्बत कोई शौक नहीं थी, बल्कि जीने की वजह थी। इसलिए जब बिछड़ने की घड़ी आई तो दुनिया की सारी रौनक भी फीकी पड़ गई। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कभी चाय का कप हाथ में होता है लेकिन उसे बांटने वाला कोई नहीं। कभी कोई अच्छी खबर मिलती है लेकिन सबसे पहले जिसे बताना चाहते हैं वो साथ नहीं होता। तब सचमुच लगता है, जी हाँ बिल्कुल सचमुच लगता है कि दुनिया तो अपनी रफ्तार से चल रही है मगर दिल कभी पीछे छूट गया है। इन्हीं जज्बातों को आवाज़ देता है ये कालजई नगमा, ये दुनिया, ये महफिल।

वक्त तो चले हैं 8:50 और साथ से किंग और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म राजा से सुनिए प्रशांत घोष की फरमाइश पर ये गीत।

हर खूबसूरत सफ़र की एक शाम होती है और हर मुलाकात का एक आखिरी पल। आज हमने प्यार के कई रंगों को महसूस किया, कभी इंतज़ार तो कभी यादें तो कभी मिलन की खुशी और कभी जुदाई का दर्द। लेकिन सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि दूरी भी उसे कम नहीं कर पाती। कोई दूर होकर भी दिल के इतने करीब होता है कि हर पल उसकी मौजूदगी महसूस होती है। जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर अपने आप से कहना भूल जाते हैं कि हमारे लिए कितने खास हैं वो। इसलिए आज जाते जाते बस इतना ही कहेंगे उन लोगों से जो आपकी दुनिया है, उनकी मौजूदगी अपनी जिंदगी में महसूस करिए। इसी एहसास के साथ प्रीति आप सभी से कहती है टाटा बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो।

0: Camera Dialogue. Light Camera Dialogue.
1: ये कलयुग है, कलयुग. क्या लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते हैं?
2: अपने मतलब के लिए.
1: मैं पुलिस वाला बना पैसा कमाने को, रॉबिन हुड बन के दूसरे का मदद करने के लिए नहीं.
0: Light Camera Dialogue. Light Camera Dialogue.